0: ना किसी से कोई मतलब ना किसी से कुछ लेना ए ए I'm one in a million पर ज्यादा भी उछले ना ना किसी से कोई मतलब ना किसी से कुछ लेना ए ए I'm one in a million पर ज्यादा भी उछले ना गाड़ी में आग लगा दे पागल का टैग है तू कहे तुझको भी पिला दे
1: Boy, yeah, हम लाइफ पे हाय बॉय yeah, तू रख तेरी राय बॉय yeah, हमसे जलता तू वाई बॉय Don't hate on me, bro. मैं naturally cool, तू जो में है class, तो मैं हूँ तेरा cool. रूल न तोड़े हम करते हैं bendo, शुरू न करे पर करते हैं endo. थोड़े सीधे हम थोड़े थोड़े black हैं, हम आगे पाकिस्तानों में lag हैं. सौ बात की बात है कि हम चाहे कुछ भी न करे बेटे उसने भी किया है. अरे हूँ तो मैं स्वागत है.

कपड़े देसी है कूल भी है क्रेजी का टैग है तू कहे तुझको भी पिला दे अरे हूट में स्वैग है अरे हूट में स्वैग है।

0: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो ढोर बाराही 103.8 मेगाहर्ज
1: स्टुडियो टाइम अहिले दिउँसोको 1 बज्यो
2: टाइम चेक को साथ में मनकेवा कालिका सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साटफेर पनि प्रोपाइटर बाजीराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165 93301

मखई पर तुम लाई दे तेरा बस तुम क्या हो बातों से तेरा मखई पर तुम लाई दे तेरा।

Yo soy una becaria, pero me estoy aquí con una persona casada. Hasta rollo. Ahí, after I got to my right in it, but like, oh, she gone to pass over a cover. I grab it, so okay. I'm just trying. So you? राज्यकोलाग में कार्यक्रम और फिर वेंटिला नगरी के ना कार्यक्रम में संगला स्थान देने ने तो बने नीरा बोल गई गीता जी कार्यक्रम स्थान देने ने शु अकाली प्रसाद बास को टाको बने क्रीप्रॉन ब्लॉग सीजन 3 बाटर रहे को सो राज्यकोलाग में से गीत सार देशु स्वीकार न हो सकता।

0: 103.8 अन्तर्मन को आवाज
1: स्टूडियो टाइटल अहिले साँझको 7 बज्यो टाइम चेक को साथ में मनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प स्टोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठ फेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98160 95301
2: सत्य तथ्य निष्पक्ष समाचार सुसज्जित हुन पाउने तपाईको अधिकार
3: धोरबाराही हाइलाइट्स को साथमा
4: छिटो छरितो र गुणस्तरीय सेवाको एउटै नाम कृष्ण आर्ट्स एन्ड अफसेट प्रेस दुलेगौडा बीपी चोक
3: शिलालेख र छपाई सम्बन्धी सम्पूर्ण कामको लागि सम्झनुहोस् सम्पर्क 98461493004

0: 103.8 अन्तर्मनको आवाज
1: स्टुडियो साइन्चेट
2: अहिले रातिको 8 बज्यो
1: टाइम चेक को साथ में बनकेवा कालिका सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु का साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301

0: 103.8 अन्तर्मन को आवाज
1: स्टूडियो टाइमचेक अहिले रातिको 9 बज्यो
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पो चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301

0: Ndiyo Dungeon.
1: Oile, biyana ko pas bajyo.
2: टाइम चेक को साथ मा बनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन मा छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन छ अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठ फेर पनी गरीन छ प्रोपाइटर बाजीराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301